0: Sangathan Shakti powers the BJP. A new captain, but no radical reset. BJP President Nitin Naveen has unveiled his first national team, a mix of seasonal organizational hands, senior leaders, and younger faces. The message: experience, Yuva and Mahila Shakti, expansion and continuity. The new lineup has 13 national vice presidents, 8 general secretaries, and 16 national secretaries, along with other key office bearers. Vice presidents include Vasundhara Raje, Ram Madhav, Bejant Panda, Deepuran Deshwari, Rekha Verma, Bharti Pawar, and Manpreet Singh Badal. General secretaries include Vinod Tavade, Sunil Bansal, Biplav Kumar Dev, Smriti Irani, Satish Punia, Gajendra Patel, Harish Dwivedi, and Sanjay Bhatia. At the core, B.L. Santosh continues as National General Secretary of the organization, with Shiv Prakash and Southern Singh as the Joint General Secretaries. Piyush Goyal has returned as National Treasurer, while Tarun Chugh has taken charge as Central Officer in Charge. The team also carries a strong regional and social imprint. Pole-bound Uttar Pradesh has got 8 key national roles, cutting across Kurmi, Yadav, Maurya, Kushwaha, Brahmin, Dalit and Muslim representation. That too, right before the state goes to elections next year. Leaders from Nagaland, Assam, Andhra Pradesh and Tamil Nadu have also found a space in the national structure. The generational mix is equally significant. 6 members are under the age of 40, 15 are between 40 and 49, and 21 between 50 and 59. Familiar faces including Amit Malviya, Dushyant Gautam and Tejaswi Surya are out of the new setup. Deepak Maske has replaced Amit Malviya as social media convener.
1: Priorities भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है और प्रण प्राण से सोशल मीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम करेगी.
0: But it's the two comebacks that remain the most talked about in town, Ram Madhav and Smriti Irani. Over a year after returning to television as the nation's favorite Bahu, Smriti Irani has now made another comeback, this time as BJP National General Secretary. Thanking the Prime Minister and the BJP Chief, she has called the journey from BJP Karyakarta to the party's National General Secretary deeply humbling. Other leaders appointed to key posts have also expressed their gratitude.
2: अपने शीर्षस्थ नेतृत्व जिन लोगों ने मेरे पर ये विश्वास प्रकट किया है उन सभी का सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहती हूँ. हमारे देश के आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, हमारे राज्य के प्रदेश राष्ट्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित भाई,
3: माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक ऐसी टीम का गठन किया है जो सामाजिक संतुलन भी कहीं ना कहीं बना हुआ है. भौगोलिक संतुलन की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से, अनुभव सत्ता की दृष्टि से भी और संगठन की दृष्टि से भी, तो मुझे लगता है आने वाले समय में संगठन और सत्ता के विस्तार में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ ये पूरी टीम हनुमान अंगद की तरह कहीं ना कहीं काम करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेगी.
0: Nitin Naveen says this team will take the BJP's Viksit Bharat mission forward.
4: मैं मानता हूं कि ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं और कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी.
0: Prime Minister Narendra Modi has also welcomed the team, calling it a blend of experience and energy, and has expressed confidence that it will strengthen the party and focus on public service. BJP leaders, meanwhile, have extended a warm welcome to the new team.
5: मैं तो बहुत excited हूँ बीजेपी का national team का सूची जब publish हुआ तो बहुत अच्छा लगा. हम तो हमेशा अपने आप को हम किस्मत वाला इंसान मानते हैं कि मोदी जी के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है.
0: For Nitin Naveen, this is his first major organizational test. And the first signal is clear. Not a reset, but consolidation. A new president at the helm, familiar organizational strength underneath, with an eye on the BJP's next electoral battles. Sangathan Shakti remains the BJP's political engine. With Maria Shakil, Piyush Mishra and Aishwarya Paliwal, Bureau Report, India Today.

0: गोली तो वगैरह चली है।
1: कहाँ चली है गोली?
0: एके एके 47 तो एक
2: आपको इसलिए ये बात को मैं फिर दोहराता हूं ताकि आपके दिमाग में, लोगों के जहन में ये अच्छी तरह से बैठ जाए। एक आदमी का मौत नहीं हुआ, एक आदमी का हड्डी नहीं टूटा, एक भी प्रोटेस्टर सीरियस इंजरी के साथ में अस्पताल में नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन हजारों में आए और छात्रों के आड़ में कितने क्रिमिनल्स आए, और आधे से ज्यादा लोग, चाहे वो आम आदमी का पार्टी हो, चाहे दफली बजाने वाले लोग हो, चाहे वो भीम आर्मी के हो या वो समाजवादी के हो, कितने लोग आकर के उकसा करके वो लोगों को वायलेंस करने के लिए उकसाया, फिर भी एक मौत नहीं हुआ। ये आंदोलन अगर कांग्रेस के जमाने में होते, और कई हुए हैं, हजारों लोग मारे गए, तो इसमें तो आप तारीफ करना चाहिए दिल्ली पुलिस को और प्रशासन को कि इतना बड़ा आंदोलन को एक भी मौत छोड़िए सीरियस इंजुरी तक तो नहीं होने दिया।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: बोली तो वो कह रहे हैं चली है।
1: कहाँ चली है? बोली कि
0: एक
1: इसका
0: एक
1: मौत
0: एक 47 तो एक शॉट।
2: आपको, इसलिए ये बात को मैं फिर दोहराता हूं ताकि आपके दिमाग में, लोगों के जहन में ये अच्छी तरह से बैठ जाए। एक आदमी का मौत नहीं हुआ, एक आदमी का हड्डी नहीं टूटा, एक भी प्रोटेस्टर सीरियस इंजरी के साथ में अस्पताल में नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन हजारों में आए और छात्रों के आड़ में कितने क्रिमिनल्स आए, और आधे से ज्यादा लोग, चाहे वो आम आदमी का पार्टी हो, चाहे दफली बजाने वाले लोग हो, चाहे वो भीम आर्मी के हो या वो समाजवादी के हो, कितने लोग आकर के उकसा करके वो लोगों को वायलेंस करने के लिए उकसाया, फिर भी एक मौत नहीं हुआ। ये आंदोलन अगर कांग्रेस के जमाने में होते, और कई हुए हैं, हजारों लोग मारे गए, तो इसमें तो आप तारीफ करना चाहिए दिल्ली पुलिस को और प्रशासन को कि इतना बड़ा आंदोलन को एक भी मौत, छोड़िए सीरियस इंजुरी तक तो नहीं होने दिया।
3: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

आजकल राजनीति में पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है उस पॉलिटिकल डिस्कोर्स की लैंग्वेज में जैसी गिरावट देखने को मिल रही है वह न केवल साथियों मैं मानता हूं चिंताजनक है बल्कि बेहद शर्मनाक है। मैं कोई निचले स्तर की राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। अभी कुछ ही दिन पहले नेता प्रतिपक्ष ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में अशोभनीय टिप्पणियां की, मैं समझता हूं वो बेहद आपत्तिजनक और निंदनीय है और सचमुच मैं तो बिल्कुल स्तब्ध था इस सोच के बारे में। संसदीय राजनीति में प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जैसे पद की एक अपनी गरिमा होती है और एक उसकी मर्यादा होती है।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जो सौंप के गए थे 1904 में, वो 1904 से लगातार कांग्रेस चलाती आ रही है। इनको नया नया वंदे मातरम से प्रेम हुआ है। इन्होंने कभी वंदे मातरम नहीं कहा जब ये लिख हुआ था। और दूसरी बात, 52 साल तक ये तिरंगा नहीं फहराते थे। तो ये सब चीजें जो है, ये सब याद है लोगों को। ये वंदे मातरम का आड़ लेकर के अपनी नाकामियों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। नौजवान जो देश का इस वक्त उबल रहा है, उसके उबाल को शांत करना चाहते हैं। ये शांत नहीं होने वाला है। ये नफरत के एजेंडे चला करके आपने बहुत देख लिए।
2: शाह तो इतने हमारे मैडम सोनिया गांधी जी के खिलाफ बात करते, गांधी फैमिली के खिलाफ बात करते। अरे मैं जब एमएलए बना था, ये अमित शाह अभी उठा नहीं था। उनका कितना 57-58 है, कितना हा? ये सब 56-57 साल वाले हैं। अरे देश के आजादी के लिए हमारे लोग लड़े, तुम लड़े, बताओ कौन सा बीजेपी का आदमी इस देश के आजादी के लिए लड़ा है? कौन सा आरएसएस वाला इस देश के आजादी के लड़ा है? और हमको देशभक्ति सिखाते हो तुम? हम देशभक्त नहीं है, ये लोग देश के खिलाफ है, एंटी इंडिया। अरे एंटी इंडिया तो तुम है, एंटी रिलीजन तुम है।
3: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: गोली तो वो कह रहे हैं चली है,
1: कहाँ चली है गोली, किसका मौत हुई?
0: AK-47 तो एक शॉट।
2: आपको इसलिए ये बात को मैं फिर दोहराता हूं ताकि आपके दिमाग में, लोगों के जहन में ये अच्छी तरह से बैठ जाए। एक आदमी का मौत नहीं हुआ, एक आदमी का हड्डी नहीं टूटा, एक भी प्रोटेस्टर सीरियस इंजरी के साथ में अस्पताल में नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन हजारों में आए और छात्रों के आड़ में कितने क्रिमिनल्स आए, और आधे से ज्यादा लोग, चाहे वो आम आदमी का पार्टी हो, चाहे दफली बजाने वाले लोग हो, चाहे वो भीम आर्मी के हो या वो समाजवादी के हो, कितने लोग आकर के उकसा करके वो लोगों को वायलेंस करने के लिए उकसाया, फिर भी एक मौत नहीं हुआ। ये आंदोलन अगर कांग्रेस के जमाने में होते, और कई हुए हैं, हजारों लोग मारे गए, तो इसमें तो आप तारीफ करना चाहिए दिल्ली पुलिस को और प्रशासन को कि इतना बड़ा आंदोलन को एक भी मौत, छोड़िए सीरियस इंजुरी तक तो नहीं होने दिया।
3: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: दिस इंडिपेंडेंस डे इंडिया टुडे मैगजीन ब्रिंग्स यू द शी लिस्ट 50 अंडर 50 फ्रॉम बिजनेस एंड साइंस टू स्पोर्ट्स गवर्नेंस सिनेमा टेक्नोलॉजी कल्चर एंड सोशल इम्पैक्ट. Meet the women achievers, innovators and change makers, redefining the next chapter of India. Read the full special in the latest issue of India Today, Making Sense of India. Now available for speed delivery on Amazon and Blinkit. Subscribe at subscriptions.intoday.in.

0: गोली तो वो कह रहे हैं चली है,
1: कहाँ चली है गोली, किसका मौत हुई?
0: एक 47 तो एक शॉट।
2: आपको इसलिए ये बात को मैं फिर दोहराता हूं ताकि आपके दिमाग में, लोगों के जहन में ये अच्छी तरह से बैठ जाए। एक आदमी का मौत नहीं हुआ, एक आदमी का हड्डी नहीं टूटा, एक भी प्रोटेस्टर सीरियस इंजरी के साथ में अस्पताल में नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन हजारों में आए और छात्रों के आड़ में कितने क्रिमिनल्स आए, और आधे से ज्यादा लोग, चाहे वो आम आदमी का पार्टी हो, चाहे दफली बजाने वाले लोग हो, चाहे वो भीम आर्मी के हो या वो समाजवादी के हो, कितने लोग आकर के उकसा करके वो लोगों को वायलेंस करने के लिए उकसाया, फिर भी एक मौत नहीं हुआ। ये आंदोलन अगर कांग्रेस के जमाने में होते, और कई हुए हैं, हजारों लोग मारे गए, तो इसमें तो आप तारीफ करना चाहिए दिल्ली पुलिस को और प्रशासन को कि इतना बड़ा आंदोलन को एक भी मौत छोड़िए सीरियस इंजुरी तक तो नहीं होने दिया।

0: All right, we have some news just coming in at this point in time. Has got to do with us exclusively accessing the ACB's remand plea in the case in connection with Satendra Jain. Well, this has got to do with the matter related to bribes and kickbacks in the sewage plant tender. The Anti-Corruption Bureau has alleged illegal gratification paid for favors. ACB alleges 1.95 crore was routed as illegal payment. ACB alleges commission payment in exchange for favor. Also that the Hawala route was used for 75 lakh rupee payment. Alleging cash and kickback trail in the Jal Board contract. ACB alleges illegal commission change hands through Hawala transactions. Also that 75 lakh rupee payment was linked to the favor that was granted. Also, the bribe money was routed through banking and Hawala channels. This has got to do with the allegations that former minister Satendra Jain is facing. Srishti has more. On that, I'd like you, Srishti, to take our viewers to all that that is being said by the investigating agency in this case before the court today, as the former minister has been produced as well.
1: Well, yes, Neha, the ACB is yet to argue before court in this case today, but we have exclusively accessed the remand plea that is filed while seeking remand, police custody of one of the accused in the case, Ankit. Big allegations have been made against all accused, including Satendra Jain and the remand plea. They've alleged that there was bribe, kickback in the DGP-SPP upgradation case. There was illegal gratification paid for favors. They've alleged that 1.94 crore was routed as illegal payment. There was also a Hawala route which was used for 75 lakh payment. Now, they have said that there was a proposal by the chief engineer at that point for a proposed relaxation of the oxygen transfer efficiency requirement. However, that particular suggestion was not, the proposal was not given effect because of a meeting which took place between the then Minister Satendra Jain and the then CEO. That decision that was taken by Jain significantly reduced the competition and allegedly favored one technological provider. Now, ACB has also said that surprisingly, this particular oxygen transfer requirement was later removed because most of the bidders had left the tender. ACB has also claimed that the technical process for augmentation of one of the STs from 15 MGD to 25 was altered by the then Minister Satendra Jain, who approved the enhancement to 30 MGD without any technical recommendation. So these are some big allegations that have come in from the ACB, also saying that no pilot study or trial run of the IFES technology was ever conducted before adopting it for large-scale implementation. The ACB, like I said, is yet to argue, but they have clearly stated that meetings were arranged between company representatives and then Minister Jain and also DGP functional backing.
0: Of course, this is what is being said by the ACB at this point in time, even as the minister has been arrested in connection with this case. And news just coming in, the Zai drama that has been reported at the RJD March in Patna. RJD March against AK-47 used. Water cannons were used during the RJD March, as you can see in these pictures on your screens at this point in time. While the party was demanding a probe into the use of AK-47 during, a protest march that was held by students, also questioning the police action, the brutality in this matter. Tejaswi Yadav is leading the RJD Star in Patna city in Bihar. Protesters toppled barricades during Star. Take a look at these images coming in. The big question that is being raised by the RJD is the use of AK-47 in Patna, a matter which has also reached the courts. A protest that is being led by Tejaswi Yadav. This is a march to Raj Bhavan asking why were AK-47s used against students. Let's take a look.
2: छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है आज कम से कम 20 से 25 दिन गुजर गए हैं फिर भी सरकार नींद से नहीं जागी है आज सुना कि सुप्रीम कोर्ट में भी बिहार सरकार ने यह माना कि हाँ AK-47 का इस्तेमाल हुआ था तो जज साहब को यह पूछना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार सरकार के वकील थे कि AK-47 लेके प्रदर्शन में जाने की अनुमति किसने दी। अगर DM और SP ने अनुमति दी थी तो तत्काल उनको सस्पेंड करना चाहिए, लेकिन ये बिहार सरकार हत्यारी सरकार है जो आम जन का भी बिहार वासियों का हत्या करवा रही आए दिन और युवाओं के भविष्य की भी हत्या कर रही है।
3: तेजस्वी यादव ने सिवान में AK-47 से फायरिंग की घटना को लेकर के राजभवन मार्च बुलाया और देखिए अब तमाम जो RJD के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, वो मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आपको देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव जो राजभवन मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं और तमाम जो नेता हैं वो उनके साथ इस वक्त आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। जो कारी स्वयं है नेतृत्व कर रहे हैं ये भी साथ में। तेजस्वी यादव दरअसल क्या मैसेज देना चाहते हैं इस मार्च के जरिए?
4: ये छात्र और युवा विरोधी जो सरकार है ये अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। किसके कहने पर AK-47 चलाया गया, किसके कहने पर गोली चलाई गई,
3: बंगला चौराहा पर रोकने की तैयारी है आप लोगों को?
4: आप तो गवाह हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में मैं जब युवा अध्यक्ष था दर्जनों बार राजभवन मार्च किया। इस सरकार ने लाठियां भी चली, इस सरकार ने पत्थर भी चलाए, इस सरकार ने पानी का बौछार भी किया। कल रोक पाए थे ना आज रोक पाएंगे।
3: और राजभवन मार्च अब फ्रेजर रोड से होते हुए डाक बंगला चौराहे के लिए कूच कर चुका है। देखना होगा कि पुलिस इनको कहां रोकती है और कहां क्या मैसेज तेजस्वी यादव देते हैं।
0: On the ground report from my colleague Shashi there at this point in time, we'll be telling about the RJD protest where high drama was witnessed, water cannons being used by the authorities. Now, this march was for the Raj Bhavan, towards the Raj Bhavan, with in fact the opposition up in arms and asking why AK-47 was used against students in a protest, remember, just a few days ago in Sivan. The leader of the opposition is marching towards Raj Bhavan. Well, we had in fact images of these protesters that were against whom water cannons were used by the authorities to bring the situation under control. RJD protest march against police action. Tejaswi Yadav leading the RJD stir in Patna. This incident of the use of AK-47 was reported from Sivan. The leader of the opposition was leading around 5,000 supporters. This was a 5-kilometer march. Tejaswi and his supporters broke through barricades placed towards Raj Bhavan. Water cannons were used against Tejaswi and his supporters, after which they were detained. High drama was witnessed. Shashi is getting in more on that story. Shashi was, in fact, had sent us that report a while ago. Shashi, aap bata rahe hain ki kis tarike se crackdown hua hai RJD ke protesters ke khilaf. Is samay sthiti kaisi hai? Aakhirkar ye Raj Bhavan ki taraf badh chuke the, isliye police ko ye action lena pad gaya.
3: बिल्कुल, चूंकि राजभवन जो है वो प्रतिबंधित क्षेत्र है तो वहाँ पर किसी तरह के प्रोटेस्ट या मार्च को जाने की मनाही है और यही वजह है कि पुलिस ने इनकम टैक्स गोलंबर जो है पटना का वहाँ पर रोका मार्च को और उसके बाद तेजस्वी यादव को डिटेन किया गया है। हम आपको देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सामने पूरा RJD कार्यकर्ताओं का जत्था है और RJD के जो नेता हैं तेजस्वी यादव वो भी सामने उसी वैन में मौजूद हैं जिसमें पुलिस ने उनको डिटेन करके रखा हुआ है, जो सामने हमारे फ्रेम में है। अब बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो बाकी समर्थक हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, वो तेजस्वी यादव के साथ ही पैदल धीरे धीरे बढ़ते हुए वीरचंद पटेल पथ में आगे बढ़ रहे हैं। पहले BJP ऑफिस पार किया उन्होंने, फिर RJD ऑफिस और अब यहाँ से R ब्लॉक की तरफ जाएंगे। और पुलिस की कोशिश यही है कि जो एक प्रक्रिया होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से इस तरह के मार्च या प्रोटेस्ट की, उसमें पहले नेता और कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया, फिर आगे चूँकि इनको राजभवन जा करके लोकभवन जा करके एक मेमोरेंडम दे सकते हैं ये, तो एक डेलीगेशन हो सकता है कि जाए जो राजभवन जाके मुलाकात करे। जो AK-47 से फायरिंग की घटना हुई सिवान में उस मुद्दे को प्रमुखता से तेजस्वी यादव ने इस मार्च का कॉज बनाया है और साथ ही साथ जो छात्रों की अन्य मांगे हैं बिहार में जो नियुक्तियां होती हैं उसके अंदर प्रतियोगिता परीक्षाओं में रिफॉर्म को लेकर के और जो वैकेंसीज बची पड़ी हैं, खाली हैं अभी पदें जो रिक्त हैं सरकारी नौकरियों की बिहार में, उसको जल्द से जल्द नियुक्तियां लाने के लिए, तो ये एक मैसेज देने की कोशिश जो तेजस्वी यादव ने की है जमीन पे उतर के, उसमें वो यहाँ सफल होते दिख रहे हैं। जी
0: शशि भूषण विद द वेरी लेटेस्ट ऑन दैट स्टोरी जॉइनिंग अस फ्रॉम पटना, थैंकिंग यू। And it's a Maha Marathi Diktat here. Marathi is going to be mandatory for commercial drivers, is what we are learning. Practical Marathi now mandatory, and that everybody should have knowledge of this language is what the rule is. And this is going to apply, viewers, to commercial drivers. Auto and taxi drivers are under this watch. Now they have to learn the language, and practical knowledge of this of the language Marathi is something that has to be ensured. Action likely in those who are not speaking Marathi. RTO officials are meeting Transport Minister Sarnaik. No Marathi, no commercial drive nod next. It's a big development. We're reporting from the state of Maharashtra, where basic knowledge of the language Marathi is important for commercial drivers, and it's a rule that is going to come into effect. And those who are unable to speak the language, no Marathi, no commercial drive nod, is what is going to be implemented. Knowledge of this language is important, is what the government has said, and knowledge of basic Marathi so that you can speak and communicate. If you are a commercial driver driving anywhere in the state of Maharashtra, this is important. So you have to have auto and taxi drivers, a chunk of whom, viewers, remember, come from different parts of the country and are migrant workers, essentially. They have to learn the language, is what the government says. Moving on, in Smart City Indore, a road that cost 40 crore rupees to build collapsed during a routine pipeline test. A section of the road caved in as water pressure testing began. This is our Get Real India story. Here's more.
5: This was supposed to be an ideal road under Indore's Smart City project. Instead, it collapsed during a routine pipeline test. At Gorakund intersection, a section of the road suddenly gave way as pressure testing was being carried out on a new water pipeline. Water can be seen bursting through the road as the surface collapses. The road built from Bara Ganpati to Krishnapura Chhatri reportedly cost around 40 crore rupees.
6: बाड़ा पर कुछ टेस्टिंग की गई थी पानी के प्रेशर को लेके तो यहाँ पर पैकिंग थी तो पैकिंग फट के सड़क धस गई है और सड़क के अंदर से पानी निकला है सड़क तो पक्की बनी है पर कुछ हिस्से में वो सड़क कच्ची है अभी जहाँ पर टेस्टिंग हुई थी ये हिस्सा कच्चा ही है अभी
7: इसके अंदर देखा जाए तो अंदर कुछ भी नहीं है सिर्फ लिपापोती की गई है पर ना कोई लाइन किसी भी प्रकार की कोई भी लाइन जुड़ी हुई नहीं अंदर यदि इसको अंदर तो खुदाई करके यदि अधिकारी देखें तो अंदर पता लगेगा कि अंदर क्या है
8: जब तक ये लाइन अगले चौराहे पर नहीं मिलेगी और जब तक ये बॉटल नेक क्लियर नहीं होगा ये हमेशा समस्या बनी रहेगी
5: म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MIC मेंबर राजेंद्र राठौर हैज अलेज्ड दैट सेवरल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हैव फेस्ड क्वालिटी कंसर्न्स ही हैज सॉट अ हाई लेवल प्रोब राइटिंग टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एज वेल एज सीनियर स्टेट एंड सेंट्रल मिनिस्टर्स
9: शहर में 1,000 करोड़ रुपए के आसपास जो स्मार्ट सिटी में आए थे तो मुझे लगता नहीं इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा उसकी जांच जो है वो होना चाहिए स्मार्ट सिटी के नाम से पूरा चूना लगा लोगों का खत्म हो गया स्मार्ट सिटी में कुछ है
5: फॉर नाउ द डैमेज्ड रोड विल हैव टू बी रिपेयर्ड बट द बिगर क्वेश्चन रिमेन्स हाउ डज अ 40 करोड़ रुपीस स्मार्ट सिटी रोड कोलैप्स ड्यूरिंग अ पाइपलाइन टेस्ट Bureau Report, India Today.
0: Well, that report and much more up on our website. It's indiatoday.in. You can download the app as well. News continues on the other side with my colleague Suresh Asan.

0: CBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: क्लैरिटी बता रहे हैं। उस टाइम सत्येंद्र सर जेल में थे और उस टाइम बीजेपी का क्या कहना था, राघव चड्ढा ने राजेंद्र नगर की कुर्सी पर बैठ जलबोर्ड घोटाले को दिया अंजाम। तो अब क्या राघव चड्ढा को अरेस्ट किया, राघव चड्ढा से पूछताछ की? आप जितने मर्जी फर्जी केसेस कर लो हम पे, हम डरने वाले लोग नहीं है, ये बीजेपी को समझ आ जाना चाहिए।
1: सत्येंद्र जैन पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए कलेक्शन एजेंट का काम कर रहे हैं पंजाब के अंदर। वो बिल्डर से, रियल एस्टेट से खुल के उगाही कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की एक मूवी है, उस मूवी का नाम है भ्रष्टाचार की किताब, दिल्ली टू पंजाब। इस मूवी के पूरी तरीके से राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर सब अरविंद केजरीवाल है। जब तक दिल्ली में अच्छी तरीके से और अच्छे नंबर के स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं बनेंगे, तब तक माँ यमुना की सफाई नहीं हो सकती। और अरविंद केजरीवाल को ये लगा कि यमुना से वोट तो आएंगे नहीं, तो क्यों ना माँ यमुना से नोट बना लें, और इसी कारण से उन्होंने इस तरीके का करप्शन कराया।
2: ये खुलासा उस समय हम लोगों ने किया था, यमुना की सफाई के नाम पर जो एसटीपी प्लांट बनाने की बात की गई थी, खास तौर से एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर के डॉक्यूमेंट में हेराफेरी की गई। उस कंपनी को टेंडर मिले इसके लिए बकायदा स्क्रिप्ट तैयार की गई, जिसके सरगना सत्येंद्र जैन थे, कि सत्येंद्र जैन यमुना सफाई घोटाले में दोषी हैं और जो पैसे चोरी उन्होंने किए उसका हिस्सा चारों तरफ बांटा गया है। तो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, जब जांच एजेंसी के पास तथ्य है, सबूत है, तभी वो किसी पे हाथ डालेगी ना। अब सत्येंद्र जैन या उनके जो पांच साथी पकड़े गए हैं, ये आंच धीरे धीरे बढ़ते हुए अरविंद केजरीवाल तक भी जाएगी।
3: And those are the several reactions that have come in as the Aam Aadmi Party continues to remain on the defensive, blaming it on the ruling party to say that this is certainly to target Satyendra Jain, given how the Punjab polls are closed and how he held a very important position as far as the upcoming polls in Punjab are concerned. But remember, as far as the ACB and its investigation, where several charges, including the money trail and how money was being routed through Hawala, has been established. The Aam Aadmi Party that continues to say that they have no legit evidence to prove the same. But there you see trouble certainly mounting for Satyendra Jain, the former Delhi minister who said that he has been arrested because of the Punjab polls. Remember, he's the Aam Aadmi Party's co-convener in the upcoming polls in Punjab. We cut across to more breaking news coming in. High voltage OBC war that has now erupted. BJP's OBC face takes on Rahul Gandhi. Rahul Gandhi has targeted the Modi government over OBC rights. Rahul Gandhi has sought Gen Z-like OBC stir against the government. BJP OBC Morcha chief has called Rahul Gandhi's remark provocative. BJP's OBC face Amarpal Maurya has said that Congress is provoking Gen Z. Let me take this to my colleague Piyush Mishra, who's also joining us on the broadcast. Before that, he's getting us this interview with Amarpal Maurya. Listen in to what he said.
4: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम आ चुकी है और लगभग सभी मोर्चों में बदलाव किया गया है। ओबीसी मोर्चे के नए अध्यक्ष अब बने हैं अमरपाल मौर्य, उत्तर प्रदेश से आते हैं, बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। आप देख सकते हैं बधाई का तांता जो उनके घर पर लग चुका है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं और नई टीम, नए जोश और नए काम के साथ अब तैयारी भी अमरपाल मौर्य जी ने कर ली है। कितनी खुशी है आपको इस बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर?
5: सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का, सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को भी गांव से निकल करके जो है आज इतनी बड़ी जिम्मेदारियों पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने बिठाया है। मैं पूरे जो है विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो अपेक्षा राष्ट्रीय नेतृत्व की है, मैं उस पे जो है अपने को खरा उतरूंगा।
4: ओबीसी मोर्चा आपको लगता है कि कितना महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए, और ओबीसी वर्ग की, हम ओबीसी समाज की बात करें देश भर में, कितना महत्वपूर्ण है, उसके लिए आप क्या, आपके दिमाग में एक्शन प्लान क्या है?
5: स्वाभाविक है कि ये जो मोर्चा है वो देश की आधी आबादी से भी ज्यादा है और सब तक जो है, सबको, सब समाज को जो है भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरा जो है जितना भी पिछड़ा वर्ग का समाज है हमारा, पिछड़ा हो अति पिछड़ा हो दलित हो, सबको जोड़ने का काम हमारी सरकार ने जो है किया है और संगठन के माध्यम से हम सरकार की योजनाओं को उन तक ले जाने का काम भी करते हैं।
4: आपने कहा कि ओबीसी समाज की जो पॉपुलेशन है उनकी जनसंख्या आधी आबादी से भी ज्यादा है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर यही आधी आबादी यानी ओबीसी समाज सड़कों पर उतर आया तो सरकार को क्या क्या स्थिति हो जाएगी, इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
5: क्या है, देश में जो अराजकता फैलाने का कांग्रेस का इतिहास रहा है, चूंकि वो संवाद और मेहनत से सत्ता में नहीं, चूंकि विरासत में जिस व्यक्ति को सत्ता अगर मिलती है और वो सत्ता जब चली जाती है तो उसकी छटपटाहट वो जो है दिख रही है अराजकता करने की आ जाती है। क्यों? काम करने का समाज में सामर्थ्य नहीं है, नैतिकता ही नहीं है, इन सबने तो नैतिकता ही खो दिया है। किस ओबीसी पिछड़े समाज की वो बात करते हैं जब वो एक परिवार के लोग 70 सालों तक इनके जो है बाप दादाओं से लेकर के सबका शासन रहा है, तो किसका उन्होंने काम, किस समाज का भला किया है ओबीसी पिछड़े?
4: ये कह रहे हैं जिस तरह से जेंसी सड़कों पर उतरा उस तरह से अगर ओबीसी आ गया तो सरकार को झुकना पड़ेगा, क्या होगा, क्या स्थिति?
5: बात बोलने का मतलब है कि जेंजी को भड़काने का काम जो है करने के पीछे का षड्यंत्र करने का क्या सोचते हैं, क्या पिछड़े वर्ग के लोगों को कोई पिछड़ा वर्ग इनकी बातों में कांग्रेस के नहीं आने वाला है, क्योंकि इनके सारे कारनामों को पिछड़ा समाज पिछड़े वर्ग को पिछड़ा ना समझे, वो गलत फहमी अगर रख रहे हो कि हम पिछड़े हैं तो जो है हमको समझ नहीं है, उनको बताइए हम किसान परिवार से आते हैं, हम सब्जियां बेचते हैं, खेती करते हैं, हमारे खेत में अगर कोई कीड़ा भी लग जाता है तो उस पेड़ को उखाड़ करके फेंक देते हैं। और कांग्रेस ने 64 सालों तक एक परिवार की सत्ता थी, पिछड़े गरीब दलित लोगों को गुमराह करके सत्ता बनाने का सोचते थे, जो स्वाद देखते हैं आज पूरा समाज इनको सत्ता से बाहर कर दिया है और एक कोने में जुगनू की तरह जाकर के जो है बैठ चुकी है कांग्रेस, वो भी जो है वो समाप्त हो जाएंगे।
4: ये कार्यक्रम दरअसल ओबीसी समाज का ही था, उनके सामने ओबीसी वर्ग के जो लोग थे उनके सामने राहुल गांधी बात बोल रहे हैं, क्या लग रहा है किस तरह से ओबीसी समाज को लेकर राजनीति राहुल गांधी?
5: ओबीसी समाज पूरी तरह से कांग्रेस को राहुल गांधी को जानता है। मैं कहता हूं कि अमेठी रायबरेली से वो सांसद हैं, वो ओबीसी गरीब पिछड़े व्यक्तियों को कितने लोगों को जो चूते हुए छत में अपना जीवन व्यतीत करता था 70 सालों तक कितने घर बना करके दिए, अगर राहुल गांधी के पास कोई सूची हो कांग्रेस ने बना के दिया है वो बुलाए सब पटल पे देना, वो अपने रायबरेली में बताए ना कितने पिछड़े वर्ग के लोगों को भला किया है, वो दुनिया के देश की तो बात।
3: And you heard that entire statement from Amarpal Maurya, who's saying that Rahul Gandhi is certainly provoking. We now cut across to more breaking news coming in. Details coming in of Samajwadi Party and Congress Netas who entered into a squabble. This happened at a UP meet where argument was primarily over who will speak first. That was the very reason for the squabble between the two sides. In fact, it led to a heated exchange before government officials. Congress's Imran Masood and Samajwadi Party's Ashu Malik, who got into this altercation, whose turn to speak argument that turned rather ugly, and that too in front of all the government officials. A political face-off that unfolded during a Disha meeting in Saharanpur, where SP MLA Ashu Malik and Congress MP Imran Masood clashed against each other while raising public issues concerning his constituency. MLA Ashu Malik firmly insisted on receiving answers from the officials. During this process, a heated exchange ensued between the two leaders regarding the timing and turn to ask questions. Listen in.
6: पहले माननीय सदस्य आप अपने सवाल पूरा करना, उसके बाद आप
7: सवाल तो हमारा है, संतुष्ट नहीं है जवाब से,
6: आप आगे थोड़ी ना बढ़ गए ना
7: जी, मैंने सिर्फ मदद की, तो आप गलत जानकारी को दे रहे हैं।
8: बच्चे की मीटिंग खत्म, तो वो इस तरह से नहीं हो सकता था, तो उसमें हमने अपनी बात रखी थी। बाकी तो ये जो वहाँ की बात है या सदन में इस तरह की होती है, मीटिंग में होती है, तो हम लोग ज्यादातर ये परंपरा है कि वहीं छोड़ के आ जाते, तो इस तरह की कोई ये नहीं है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि होता है कोई भी, वो चाहता है अपने क्षेत्र की ज्यादा से ज्यादा विकास करा सके, अपने क्षेत्र की ज्यादा से ज्यादा जो समस्याएं हैं उनको रख सके, उनको उठा सके। तो वही बात थी, क्योंकि सहारनपुर नंबर एक पे भी आता है और आखिरी में भी है, तो कहीं ना कहीं विकास से और उन तमाम मूलभूत सुविधाओं से पिछड़ा हुआ है जो सहारनपुर को मिलनी चाहिए। तो हम पिछले 4 साल से उन्हीं, चाहे यहाँ कैंसर, बढ़ते कैंसर के मामले हों, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो आप सबसे किसी से छिपी नहीं है किस तरह की हैं। दूसरा, जो स्मार्ट सिटी की हम लोग बात कर रहे थे, तो स्मार्ट सिटी को आप बताइए, सहारनपुर की जो पहचान है वो वुड कार्विंग से है। यहाँ की जो लकड़ी की नक्काशी है, जो कारीगरी है, जो यहाँ का कारीगर है, उससे इस सहारनपुर की पहचान है। और हम कौन सा स्मार्ट सिटी बना देंगे सहारनपुर पे, उसको नजरअंदाज करके पिछले वर्ष स्मार्ट सिटी बनने के बाद, पिछले वर्ष जब बारिश हुई थी तो सबने देखा था कि पूरी जो वुडन सिटी है खाताखेड़ी, जहाँ देश विदेश से लोग उस नक्काशी को देखने आते हैं, खरीदारी करने आते हैं, और वो ये कहेंगे कि देश में तो प्रसिद्ध है ही, कहीं ना कहीं विश्व में भी सहारनपुर का नाम इसी उससे जाना जाता है, वुड कार्विंग से। और दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पे होजरी का काम।
3: That's Ashu Malik explaining his side of the story. But what reflected as part of that altercation was a message to one and all. Take a look at that sequence yet again. And there you see that spat that took place in public view where one and all were present. Remember, the message that goes out of the allies who enter into such an altercation, and this is ahead of the UP polls that will take place somewhere in the start of 2027. But SP and Congress are at loggerheads there. We just heard from Ashu Malik explaining his side of the story, but certainly the message that is going out, and all of this happening in public domain, happening in front of all the government officials, a political face-off over whose turn is it to speak first, and that became so ugly. Let me take this to my colleague Samarth Srivastav joining us on the broadcast. Samarth, now of course they understand that the damage is done and it's out there, that this video is going viral, both explaining their sides of the story, especially we heard from Ashu Malik. But fact still remains that the message that goes out ahead of the UP polls in 2027 and the SP versus Congress relationship that gives a hint.
9: Other exactly what we are seeing in this particular video, where Ashu Malik is a Samajwadi Party MLA, while there's Congress MP Imran Masood, who are in a way clashing in that particular video over some local issue of Saharanpur, where you can see that how Imran Masood is in a way asking Ashu Malik to stop and behave normally in this particular meeting. But we can clearly see the point that's happening right over here, where you can clearly get the sense that Ashu Malik is continuously repeating the same particular line, while both looks upset, while in between we can also see Ikra Hassan sitting right over there. And in one sentence, Ashu Malik even in anger says that I haven't come here to have chai and pakora. There Imran Masood clearly replies that who is offering you chai and pakora. So this is something, a tussle between Samajwadi Party and Congress have come to light, because we have seen what Imran Masood is speaking in terms of the seat sharing, especially from day one, is also hurting Samajwadi Party very well. And that's what we are seeing. And also, if you talk about the local politics of Saharanpur, the relations between Ashu Malik and Imran Masood are not that good. We have seen that before as well. So in this particular Dasha meeting, where the local MP...
3: Oh, yes, absolutely. But certainly the damage already done. We'll leave it at that. I want to thank you for getting us those details. Well, that is time for us to slip into a very short commercial break. We'll be back on the other side with the very latest. Do stay tuned to India Today.

0: भारतीय जनता पार्टी सरकार की यही नीति है, जो सरकार काम करे उसको डिस्टर्ब करो, उसको रोको, उसके ऊपर हर तरीके से दबाव बनाओ। आपको याद होगा दिल्ली चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, सत्येन जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। मकसद एक ही था, दिल्ली का चुनाव डिस्टर्ब करना, दिल्ली के चुनाव को एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद हर तरीके से जीतना। और वही काम अब ये पंजाब चुनाव के पहले कर रहे हैं।
1: जहां जहां बीजेपी को लगता है कि चुनाव में लड़के वो आम आदमी पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती, तो फिर वो अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, फिर वो ये हथकंडे अपनाती है। इतना फर्जी केस है, आप खुद सोचिए, मई 2022 से सत्येंद्र जैन जेल में है, और एक ऐसे टेंडर के लिए जो अक्टूबर 2022 में हुआ, उसके लिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया। इतना फर्जी केस है कि किसी को भी इस पर यकीन नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का डर इन सारी घटनाओं से, उसकी तानाशाही बिल्कुल खुल के सामने आती है। अरे डरपोक मोदी, डरते क्यों हो? हिम्मत है तो चुनाव में मुकाबला करो।

0: जी, पिछले कुछ दिनों में हमने ये देखा है कि कैसे एंटी इंडिया कंटेंट जो है वो एक बड़ा चैलेंज रहा है। आप कई बार जो है सरकार ने रेगुलेट करने की कोशिश भी की, कुछ नए रूल्स भी लाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी इन इस तरह के कंटेंट को ज्यादा पुश मिलता है सोशल मीडिया पे। कैसे आपको लगता है कि आप अपनी बात ज्यादा बेहतर तरीके से रख पाएंगे बनिस्पत इस कंटेंट की अगर हम बात करें तो?
1: देखिए, झूठ के पांव नहीं होते पीयूष जी। ये भी
0: जी
1: कहा जाता है, झूठ को बार बार कहे तो सच प्रतीत होता है, लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है। ठीक है, इस तरह की
0: जी
1: सनसनियां लोग फैलाते हैं, कुछ समय तक ऐसा लगता है कि बड़ा उन्होंने कुछ कर दिया है, लेकिन सही समय पर अगर हम सही बातों को पहुंचाने का जो हम लोग ने रणनीति बनाने वाले हैं उसमें और उधार लाएंगे, और इस तरह का जो भी एंटी नेशनल कंटेंट चलता है उसके खिलाफ लोगों में जागरूकता लाने के लिए कंटेंट बना के वहां तक पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, आईटी लॉज है हमारे पास, सरकार भी गंभीरता से देख रही है, और पार्टी के विंग के प्रमुख होने के नाते जो भी चीजें हमारे सामने भी इस तरह की आएगी उसकी निश्चित रूप से रिपोर्टिंग हो जाएगी।
0: दीपक जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या युवा सांसदों और पॉलिसी रिसर्च को आप ट्रेन करेंगे?
1: ट्रेनिंग तो हमारा भाजपा का पार्ट है,
0: जी
1: हर
0: जी
1: विषय में हम लोग ट्रेन होते भी हैं, ट्रेन करते भी हैं, और अच्छी बात है कि सोशल मीडिया भी एक अहम विषय है उसमें। उसमें मैं भी ट्रेन हूंगा, हमारे सारे लोग ट्रेन होते आए हैं और समय समय पर होते रहेंगे। ये हमारा
0: एक
1: अपना
0: सवाल ये कि लंबे राजनीतिक भाषणों की जगह टिकटॉक जैसे और रील्स है तो छोटे छोटे और तेज वीडियो कैसे बना पाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं युवाओं में जल्दी इसका असर हम देखते हैं और युवा इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ज्यादा दिखाते हैं। इंस्टाग्राम पे भी युवाओं की जो मौजूदगी आप जानते हैं कि कितनी ज्यादा है।
1: देखिए, रोचक ढंग से हमारा विषय अच्छे से लोगों तक पहुंचे, इसमें जो भी माध्यम उपयोग करना होगा वो हम करेंगे, लेकिन गलत चीजों को फैलाने में भारतीय जनता पार्टी कभी भी आगे नहीं रहेगी। सही विषय लोगों को रोचक लगे, वो पढ़ें, उसको देखें, उस दिशा में जो भी काम करने की आवश्यकता होगी हमारी टीम करेगी।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: Big news coming in from across the border. Pakistan government has filed a review petition against Supreme Court order to shift Imran Khan to a private hospital. Remember, there was the family, the lawyers representing Imran Khan had been claiming if he's even dead or alive and that he needs to be, for his health perspective, to be shifted to a hospital. But now the Pakistan government has challenged that. The development comes a day after the top court had ordered the Adyala jail authorities to transfer the PTI founder to Shifa Hospital for medical assessment and treatment within the next 2 days. But there's a petition that's been filed today by Pakistan government. The federal government saying that the Supreme Court's 18th August interim order directing that former PM Imran Khan be transferred to a private hospital exceeded the court's jurisdiction and that it should be reviewed. Imran Khan, just to let you know, is about 73 years of age. He's been in prison since 2023 August, following convictions that he and his party, though described as politically motivated, but especially with regard to financial fraud. Arvind Oja joins me for the latest on this news from across the border. Arvind, bahut hi interesting cheez hai, isme zyada mushkil aani nahi chahiye thi, hospital pahunch sakte the former Pradhan Mantri Pakistan ke Imran Khan, lekin Pakistan sarkar ko ye manzoor nahi hai, wo to court pe hi sawal utha rahe hain, kya hua?
1: बिल्कुल, देखिए, और जो पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर हैं आजम नजीर तरार, उन्होंने कल बकायदा हवाला दिया था कि जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है एक प्राइवेट अस्पताल में इमरान खान को एडमिट करने का, वो जेल मैनुअल के खिलाफ है। जेल मैनुअल के मुताबिक कोई कैदी होता है, कोई प्रिजनर होता है, उसको जेल का जो मेडिकल बोर्ड है वो उसका इलाज करता है, और जब वो रिकमेंड करता है तब किसी गवर्नमेंट अस्पताल में उसका इलाज करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जेल मैनुअल को दरकिनार करते हुए जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है उसने फैसला सुनाया, और इस वजह से कल ही उन्होंने बता दिया था कि पाकिस्तान की जो सरकार है, जो अथॉरिटी है, वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करेगी, जो आज उन्होंने किया, और ये साफ मांग करेगी वहां पर पाकिस्तान की सरकार कि इनको सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया जाए। दरअसल इमरान खान को लेकर लंबे वक्त से पाकिस्तान में पॉलिटिक्स हो रही है। जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता है वो ये बताते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की जेल में इमरान खान के साथ अत्याचार हो रहा है। बीते कई वक्त से ये बात भी सामने आ रही है कि इमरान खान की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। कई बार अनकन्फर्म रिपोर्ट ये भी आती है कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। इन सब को लेकर जो उनके फैमिली के लोग थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा ऑर्डर भी दिया था कि जो प्राइवेट वहां का नामी अस्पताल है सिफा, उसमें इमरान खान का इलाज कराया जाए, उनकी जो जो जो हेल्थ की जानकारी है वो कोर्ट को भी दी जाए। लेकिन अब पाकिस्तान की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज करते हुए रिव्यू पिटीशन फाइल किए हैं।
0: Thank you so much, Arvind Oja, telling us how Pakistan government doesn't really want Imran Khan to be shifted to a hospital, but why would that be a concern? We'll be tracking more on that. All right, now I want to tell you the top political news that's coming in, BJP versus Congress on the OBC factor. It's the OBC political war that's erupted between the two parties. Rahul Gandhi, leader of opposition, targeted the Modi government over the OBC representation and the caste census. Rahul Gandhi claiming there is no OBC column in the census and that OBC account for 50% of the population. He's also invoking the recent Gen Z protests, saying that if OBC groups take to the streets in a similar manner, the government will have to bow down to them. Rahul Gandhi also credited OBC pressure for the government decision to conduct a caste census. But the BJP has hit back over these claims and objection by Rahul Gandhi. BJP OBC Morcha chief Amarpal Maurya called Rahul Gandhi's remarks as provocative, accusing him to trying to incite the OBC community members. BJP is alleging that Congress had provoked Gen Z protests and claimed Rahul Gandhi has done nothing for India. The political battle comes as PM Modi continues to prominently showcase his OBC identity, making OBC representation an important part of BJP's political narrative.
2: जिंजी को भड़काने का काम जो है करने के पीछे का षड्यंत्र करने का सोचते हैं क्या? पिछड़े वर्ग के लोगों को, कोई पिछड़ा वर्ग इनकी बातों में

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: lot of people take xylem husk for fiber.
1: Yes.
0: And?
2: अगर chia seeds जितनी marketing xylem husk की हो जाए तो India की gut problems काफी सारी solve हो जाएंगी.
0: हो जाए. मुझे लगा आप कहेंगे variety होनी चाहिए fiber में. रोज रोज नहीं खा सकते आप इस सब goal.
1: See, as a doctor.
0: हाँ.
1: मेडिसिनल यूज किसी भी चीज का हो आई विल नॉट रिकमेंड विदाउट टॉकिंग टू योर डॉक्टर बट इसबगोल इज साइलियम हस्क इज द सुपरमैन फॉर फाइबर प्रोवाइडेड डन राइट हैड विद एटलीस्ट 3 ग्लासेस ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे आइडली एड अ प्रोबायोटिक टू इट विद कर्ड
0: बिफोर मील आफ्टर मील
1: 7 to 9 के बीच में डिनर के 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद और दवाई ना ले अपने बीपी और एंटीकोगुलेंट्स अगर हार्ट पेशेंट हैं तो ब्लड थिनर चल रहे हैं वो सब उसके आसपास ना लें क्योंकि वो जेल बनाता है सॉल्युबल फाइबर है पेट में तो डिले करता है अब्सॉर्प्शन पता लगा आपको एंटीकोगुलेंट चल रहे हैं आपको हार्ट अटैक आ गया तो दवाई 4 घंटे पहले और बाद में ना लें और एक ब्रेथ टेस्ट करवा लें क्योंकि अगर आपको सीबो जैसी प्रॉब्लम है इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ग्रोथ क्योंकि वो पेट में जाके एकदम से वो बना रहा है ना जेल बना रहा है और क्योंकि वो जेल बना रहा है आप उसे पानी दोगे तभी वो बाइल एसिड को अब्सॉर्ब करेगा बाइल एसिड को एक्सक्रीट करेगा तभी आपका लिवर एलडीएल को खींचेगा बैड कोलेस्ट्रॉल को और बाइल एसिड में कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज अब्सॉर्प्शन को कम करता है डायबिटिक्स के लिए सब बोल बहुत अच्छा होता है डिले करता ना मामले को ठंडा कर देता है जैसे आपकी किसी से लड़ाई हुई तो समझदार आदमी कहता है लेट्स स्लीप ऑन इट टुनाइट आई विल नॉट रिएक्ट टुनाइट कल सुबह बात करें जो जेंजी होता है वो उसी रात को भिड़ जाता है मतलब सब कुछ लेके तो इसबगोल कूल्स इट डाउन फॉर अ टाइम सो वी हैव टू बी स्मार्ट बिकॉज फाइबर इज फॉर योर गट बैक्टीरिया एंड गट बैक्टीरिया आर द फ्यूचर ऑफ हेल्थ

0: गोली तो वगैरह चली है,
1: कहाँ चली है गोली, किसी से मौत हुई?
0: AK-47 तो एक शॉट।
2: आपको इसलिए ये बात को मैं फिर दोहराता हूं ताकि आपके दिमाग में, लोगों के जहन में ये अच्छी तरह से बैठ जाए। एक आदमी का मौत नहीं हुआ, एक आदमी का हड्डी नहीं टूटा, एक भी प्रोटेस्टर सीरियस इंजरी के साथ में अस्पताल में नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन हजारों में आए और छात्रों के आड़ में कितने क्रिमिनल्स आए, और आधे से ज्यादा लोग, चाहे वो आम आदमी का पार्टी हो, चाहे दफली बजाने वाले लोग हो, चाहे वो भीम आर्मी के हो या वो समाजवादी के हो, कितने लोग आकर के उकसा करके वो लोगों को वायलेंस करने के लिए उकसाया, फिर भी एक मौत नहीं हुआ। ये आंदोलन अगर कांग्रेस के जमाने में होते, और कई हुए हैं, हजारों लोग मारे गए, तो इसमें तो आप तारीफ करना चाहिए दिल्ली पुलिस को और प्रशासन को कि इतना बड़ा आंदोलन को एक भी मौत छोड़िए सीरियस इंजुरी तक तो नहीं होने दिया।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: यू
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: दिस इंडिपेंडेंस डे इंडिया टुडे मैगजीन ब्रिंग्स यू द शी लिस्ट 50 अंडर 50 फ्रॉम बिजनेस एंड साइंस टू स्पोर्ट्स गवर्नेंस सिनेमा टेक्नोलॉजी कल्चर एंड सोशल इम्पैक्ट. Meet the women achievers, innovators and change makers, redefining the next chapter of India. Read the full special in the latest issue of India Today, Making Sense of India. Now available for speed delivery on Amazon and Blinkit. Subscribe at subscriptions.intoday.in.

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: CU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: सम्राट चौधरी के आदेश में हुआ है सब कुछ। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जनता जाग चुकी है, सड़कों पर है, सरकार को जो है जितना ही पड़ेगा, ऐसे काम चलने वाला नहीं है।
4: जो छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, आज कम से कम 20 से 25 दिन गुजर गए हैं, फिर भी सरकार नींद से नहीं जागी है। आज सुना कि सुप्रीम कोर्ट में भी बिहार सरकार ने यह माना कि हाँ AK-47 का इस्तेमाल हुआ था, तो जज साहब को यह पूछना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में, जो बिहार सरकार के वकील थे, कि AK-47 लेके प्रदर्शन में जाने की अनुमति किसने दी। अगर DM और SP ने अनुमति दी थी तो तत्काल उनको सस्पेंड करना चाहिए, लेकिन ये बिहार सरकार हत्यारी सरकार है, जो आम जन का भी, बिहार वासियों का हत्या करवा रही है आए दिन, और युवाओं के भविष्य की भी हत्या कर रही है।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: गोली तो वगैरह चली है।
1: कहाँ चली है गोली?
0: AK-47 तो
2: आपको इसलिए ये बात को मैं फिर दोहराता हूं ताकि आपके दिमाग में, लोगों के जहन में ये अच्छी तरह से बैठ जाए। एक आदमी का मौत नहीं हुआ, एक आदमी का हड्डी नहीं टूटा, एक भी प्रोटेस्टर सीरियस इंजरी के साथ में अस्पताल में नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन हजारों में आए और छात्रों के आड़ में कितने क्रिमिनल्स आए, और आधे से ज्यादा लोग, चाहे वो आम आदमी का पार्टी हो, चाहे दफली बजाने वाले लोग हो, चाहे वो भीम आर्मी के हो या वो समाजवादी के हो, कितने लोग आकर के उकसा करके वो लोगों को वायलेंस करने के लिए उकसाया, फिर भी एक मौत नहीं हुआ। ये आंदोलन अगर कांग्रेस के जमाने में होते, और कई हुए हैं, हजारों लोग मारे गए, तो इसमें तो आप तारीफ करना चाहिए दिल्ली पुलिस को और प्रशासन को कि इतना बड़ा आंदोलन को एक भी मौत छोड़िए सीरियस इंजुरी तक तो नहीं होने दिया।